एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चेहन अर वर्ण जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहे जाय कोट इंद्र इंद्राण साह सहान गणिज त्रिभावन महीप सुर नर असुर नीत नीत मंत्रण कह त सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत समत अब राख उदास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फोन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहुसाज सुदामा आपदा तिराख्या गणका पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सु प्रसन्न कल जग होए रख हो दास पाठ की लाज निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा ढाकण हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अविनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बधाते उस्तत कह न जाए तुम्हारी कौन कह तू कद का नानक दास ताकै बलिहारी मिला नाम हर निमका चिंत भवन मन भरयो हमारा नाम बिना कैसे उतर सपारा देह बिमल मत सदा शरीर सहज सहज गुण रवै कबीरा मैं नाही कछ नहीं किस आहे न मोरा अवसर लज्जा राख लिहो सदना जान तोरा सो कहो टल गुर सेविया अहन सुसहज दर्शन।

पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गुम अगुम पारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हर तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा

तदप्य भव सोई वर्त जी तुअपि करह सोई तुदयापि सृष्ट सब उपाई जी तुदयापि सृज सब गोई।

अमरी करो हास दै रक्षा, पूर्ण होए चित इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। अमरी दुष्ट समय तुम काबहो, आप हास दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा।

तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन सत्र हमारे मारिया। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिय हो रक्षा। राख लियो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब

नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजाजिनी आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कट कट के

दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्वत।

अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब साधारो। जी को खावे जी को पुंचाय, तिसका हुए उदारो। यह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख और तारो। तम संसार चरण लग तरिया,

जब लो नहीं पाग लीलार हृदय तब लो भ्रमती फिरती बहुतायो कल खोर समुद्र में बूढ़त थे।

तत्व विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर सं

मिल कंचन होया राम, ज्योति जोत मिलाए काया गढ़ सोहया राम, काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास गिरास विसारिया, अदृष्ट गोचर पकड़िया गुर शब्दी, हो सतगुर कै बलहारिया, सतगुर आगै सीस भेट देओ, जी सतगुर साचे पावे, आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे, सतगुर आगै सीस भेट देओ,

सोत दारा स्यो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई।

सदा कल निवरे करण स्यो इच्छा क्यारे द्रुम सपूर योनि में खवे कस बिमल बिचारे यह तत् जानो सर्वगत लख बनाणी सहज पाए संचयो किरण अमृत कल बाणी गुरगम परमा।

दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत संबंधी नूर अरसों चट्टी दुध डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी फटी है सज्जन सच्चा पातशाह इर्षादश जिस पास बैठिया

नित नित करदा सार सतगुर पूरा भेटिया पाई शब्द मिलावन हार सच्चे चरण श्री वियह पाई ब्रह्म भव होवै नास मिल संत सबा मन मांझिया पाई हर कै नाम निवास।